मान तान अहं बुद्ध तीरी सा नानक सुहागवती री सुही महला पंजवा। तू जीवन तू प्राण आधारा तुझ ही पेख पेख मन साधारा। तू साजन तू प्रीतम मेरा चित है न बिसरै काहू बेरा। राहु बै खरीद हों दासरो तेरा तू भारो ठाकुर गुनी गहेरा। कोट दास जाके दरबारी निमख निमख वसै तिन नाले। हौ किश नाही सब किश तेरा पोत पोत नानक संग बसेरा। सूही महला पंजवा सूख महल जाके ऊचपन द्वारे। तामह वसै भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अत के मीठी। बिरलै काहू ने त्रों डेठी रहाओ तह गा गीत नाद खारे संगा। ऊहा संत करह हर रंगा तह मरण न जीवन सोग न हरखा। साच नाम की अमृत बरखा गोज कथा ए गुर ते जानी। नानक बोलै हर हर बाणी। सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारे। पेटत संग हे पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हम सह हम कौ हर नाम जतारे। राहु जा कै शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जम दूत बिदारे। जा की तीरक एह मन सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे शरण नानक तिन सद बलहारे। सूही महला पंजवा रहन न पावै सुर नर देवा कोट सुधारे कार मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया। रहाउ बादशाह शाह व्यापारी मरना जो दिस है सो काल करना। कूड़ै मोह लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना। कृपा निदान नानक कौ करहु दात नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा घट घट अंतर तुम्हें बिसारे सगल समगरी सूत तुम्हारे। तू प्रीतम तू प्राण आधारे तुम ही पेख पेख मन बिगसारे। राहु अनक जोन ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्महारे ओट गही अब साध संगारे। अगम अगोचरा लाख्या पारे नानक सिमरै दिन रहनारे। सूही महला पंजवा कवन काज माया वढ़ियाई जा को बिनसत बार न काई। एह सुपना होवत सोवत नहीं जानै अचेत व्यवस्था महल पटानै। रहाउ महामोह मह मोह गावारा पेखत पेखत उठ सदारा। ऊच ते ऊच तां कादर भारा कई जानत बिना ही उपारा। दूसर हुआ ना को होई जप नानक प्रभ एको सोई। सूही महला पंजवा सिमर सिमर तां कहो जीवा चरण कमल तेरे तोई तोई पीवा। सोहर मेरा अंतर जामी भगत जना कै संग स्वामी। राहु सुन सुन अमृत नाम पिंद आवा आठ पहर तेरे गुण गावा। पेख पेख लीला मन आनंदा गुण अपार प्रभ परमानंदा। जा कै सिमरण हां कछ पौ न ब्यापै सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवा गुर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूर्त दर्शन बलिहारी चरण कमल मन प्राण आधारी। रहाउ साध संग जन मरण निवारी अमृत कथा सुन कर्ण आधारी। काम क्रोध लोभ मोह तजारी

पंजवा लोभ मोह मगनया पराधी करणहार की सेवना साधी पातत पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लेह मोहे निर्गुणया रे राउ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची देहे मनुख अगे अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर गाया सगल त्याग नानक बसरण आया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिया नाही निकट वस्त कौ जान है दूरे पापी पाप माही सो किस कार जित तुम है छुटै परानी

हर हर नाम जप अमृत बाणी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु न जाता रखें पचार माटी का पांडा आत कुचील मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बादा महागर्त मह निगर्त जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पाहन प्रभ मेरे ली जय सूही महला पंजवा जीवत मरै बूझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन इउं दो तर तरियै मिल साधु हर नाम उचरियै रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै कट कट अंतर पार ब्रह्म पछानै जो किस करै सोई पल मानै आदि अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जान कै हृदय वसै मुरारी सूही महला पंजवा गुर परमेश्वर करनै हार सगल श्रेष्ठ कौ दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए राउ भव जल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवै शांत सतगुर की रेण वडभागी पावै नानक गुरु कौ सद बल जावै सूही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए रह सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल घटा का अंतर जामी राहो चरण कमल स्यों लागी प्रीत साची पूर्ण निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही जन्म जन्म के कल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगै संतर वाला सूही महला पंजवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे रहाओ अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किने बिर लै जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसै मेरा चीता नानक एक कर अरदास मिस्र नाही पूर्ण गुणतास सूही महला पंजवा मीत साजन सोत बंद पपाई जत कत पेखो हर संग सहाई जत मेरी पत मेरी तन हर नाम सुख सहज आनंद विश्राम राउ पार ब्रह्म जप पहर सना कोट आबद तिस बेदत नाहि हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे काल कंटक जम तिस ना बिदारे नानक दास सदा बलिहारी केतक सेवक संत राजा राम मुरारी सूही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद विनोद मंगल सुख ताहा चल सखिए प्रभ रावण जाहा साध जना की चरणी पाहा रहाऊ कर बेनती जन तूर बाशाहा जन्म जन्म के कलिविख लाहा मन तन प्राण जियो वर पाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करो तचाहा नानक दास हर शरण समाहा सूही महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभ चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो हर अनक बिंजन तुझ भोग पंचावो रहाओ अमृत नाम पहुंच मन माही अचार्य साध ताके वरने ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जनता की जन्म जन्म के पै मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करया तुम्हें छुड़ाई लियो जन अपना पुरज पर्यो जाल जग सुपना राउ पर्वत दुख महा बिकराला खिन मह दूर किए दयाला रो सोग रोग विपत अत पारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट तार लीनो लड़लाए हर चरण गहे नानक शरणाए सूही महला पंजवा दीन छुड़ाए दुनी जो लाए दोही सराही खुनामी कहाए जो तिस पावै सो प्रवान अपनी कुदरत आपे जान राउ सच्चा धर्म पुन भला कहा कराए
दीन कै तो सह दुनी न जाए, सर्व निरंतर को जागै, जित सित लाया तित तित लागै, आगमा गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोलै बुलाया तेरा। सूही महला पंजवां, प्रांत काल हर नाम ते उचारी, एत ऊत की ओट सवारी, सदा सदा जपिय हर नाम, पूर्ण होवै मन कै काम रहाऊ, प्रभ अविनाशी रैन दिन गाऊ, जीवत मरत ने चल पावै ताऊ, सो सा सेव जित तोट न आवै, खात खर्चित सुख आनंद पिहावै, जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम पियाया। सूही महला पंजवां, गुर पूरे जब पई दयाल, दुख बिनसे पूर्ण पई काल, पेख पेख जीवां दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलहारा, तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाऊ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचर्ज प्रताप, जाल न सके तीने ताप, निमख न विसरै हर चरण तुम्हारी, नानक मांगै दान प्यारे। सूही महला पंजवां, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावे गुण सदा रसाला राऊ, जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करहें बसें तिस मेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार, राम रमत संतन सुखमाना, कर नानक देवनहार सुजाना। सूही महला पंजवां, बहती जात कदे दृष्ट न तार तू, मिथ्या मोह बंदे नित पारचू, माधवे पाज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी राऊ, करत विकार दू कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं तारत, भरण पोखण संग औद विहाणी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी, उधर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवां, साध संग तरै पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पापत जायण रहाऊ, जीवन पद भी हर का नाऊ, मन तन निर्मल साच सुवाऊ, आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत लिख होए ता पाई है, शरण पई जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सूही महला पंजवां, घर का काज न जानी रूड़ा, झूठा तंद रचियो मूड़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाऊ जपना राऊ, हर के दास हर से तीराते, राम रसायण अनदन माते, बहा पकर प्रभ आपे काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, उधर स्वामी प्रभ कृपा तारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सूही महला पंजवां, संत प्रसाद ने चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डोलाया, गुरु ते आई हर चरण मन पिचीने, तांते करते अस्त्र चीने, कीने राव गुण गावत अचुत अविनाशी, तांते काटी जमकी फासी, कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवां, अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तिस की गत होवै, हर हर नाम नित रसन बखानी राव, कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में प्रवेशा, साधु तूर मुख मस्त कलाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सूही महला पंजवां, कर तीजा, गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूर्ण कृपाला रहो, कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चलै जप नाला, नानक जाचै संतर वाला। सूही महला पंजवां, जिस बिन दूजा वरना कोई, आपे थम्मै सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार रहाऊ, सब रोग मिटावे नवा नरोआ, नानक रखा आपे हुआ। सूही महला पंजवां,
दर्शन कौ लूचै सब कोई, पूरै भाग प्राप्त होई रहाउ। स्याणप सुंदर श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई, प्रेम बिशोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिस कर दया न पाई, अनक जन्म बीतियन परमाई, कर वास न देवै दुतरमाई, जिन रैन अपना किया जाप अपना किया पाई, किस दोष न दीजै किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण शरण नानक गत पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाह

पंच नहीं बनाया, उन्हें जोड़ दिया है, बर्तुली उन्हें रस्ता भी जोड़ देता है, तो कहरे पासे जाना है, ये फैसला फिर आए उत्तम नीचे इसे बन जाए, उन्हें अखा में जोड़ देती है, तो की देखनी है की नहीं देखना, ये तेरे की मसला है, उन्हें जबान में आवाज देती है, बोल देते हैं, पर तू की बोलना की नहीं बोलना, ये मसला तेरे पे है, जोड़ ये पता उस जबान में क्यों बोल ही खोले, गूंगा हो जाए, बोली ना रहे ना तो उत्तम बनेगा ना नीच बनेगा, ना किसी मिठे वचन बोल सकेगा ना किसी गाल कर सकेगा, ऐसे तेरी मर्जी में जो रोता है, ये तेरे लगता दी शक्ति चली जाए ना तो गुरुद्वारे जा सकेगा ना क्लब जा सकेगा ना उत्तम बनेगा ना नीच बनेगा, जिस हाथ जोर कर वे कैसे हो ना ने उत्तम नीच ना हो ताकत होगी, जेड़िया तेरिया लत्तां विच है उन्हां लत्तां दे राही उस ताकत ने तेनू उत्तम नीच नहीं बनाया, उन्हें लत्तां विच पई हुई ताकत दी तू वरतों की कीती है उत्थे तू उत्तम नीच हो, गुरु कहने लगे भलिया इस लई जदों एत राय दीआं पवड़ियां चढ़े जदों रब दे राहां दीआं मंजिलां तय करे जदों प्रभु मिलाप वल अगे वधे एक फैसला तेन मुझले रूप में कर लेना चाहिए है कि तेरे उस पद पवड़िया चढ़दियां चढ़दियां किसी भी अवस्था में कभी यह ना सोच आवे कि यह कुछ मैं कर दिया, यह कुछ मैं कर दिया, ना होवे सेवा करें ते मन हो विच होवे, इसलिए गुरु ने बारी भी चख दिता।

कोई फायदा ना होया। नाम नाल कोई पौड़ी उपर चढ़े ते होमे ने पहाड़ नाल उस पौड़ी तो थले डिग पियो। सारी जिंदगी लगा रहो, कदे चढ़ गया कदे उतर गया, कदे चढ़ गया कदे उतर गया, मंजिल तो नहीं ना मिलती। दो कदम अगे जा रहे, दो कदम पीछे जा रहे। एक पत्थर है, एक पहाड़ है। ना तेन दो कदम उच्चा उठा है, हमें तेन दो कदम पिछे सुट दें। मैं एक बार कि हमें हरी विच एक अंतर है। हरी आखता मैं तां अंदर आवांगा, हम कटेगा। मैं साफ सुथरा सुचा टिकाना चाहिए। हरी आखता हम कटेगा तां अंदर आवांगा। हाँ के भी अभिमानी, अभिमानी तो हूं। हाँ के भी अभिमानी, वो कह बिल्कुल मेरी कोई शर्त नहीं, तू बेशक हरी हरी कही जा, मैं आपे ही अंदर आ जावा। तू बेशक जपजी साहब का पाठ करी जा, मैं आपे ही आ जावा। मेरी ये कोई शर्त नहीं, पहलों हरी में कड फिर आवाना अमन, मैं आपे ही आ जावा। जिस दिन मैं आ गई, हरी ने आपे ही उठ जाना, मैं अपनी थां आपे ही बना लेनी। ये मनी

बड़ी भौतिया कर तेरे वस विच कुछ नहीं, ये सारा जोर ये सारी शक्ति भावें तू बोल रहे हैं भावें चुप कर रहे हैं भावें सोच रहे हैं भावें दुनिया का राज भाग इकत्र कर रहे हैं, ये तेरिया अपनिया पैदा की हुई दिशावान ने, लेकिन जोर तेरा नहीं। जिस दिन वो जोर तेरे खिंच लेगा इन्होंने सारे कामों में तू कुछ भी नहीं कर सकता।

क्योंकि दूर वो ही रहेगी जिंदे को युवती ने दुनिया का केड़ा मनुख है जरा युवती नहीं चाहता दुनिया में तो आई थी कि जोगी के एक हरजुगुंद दसाई तित कारण का मुद्रा पाए मनुख तो जुगुद पालता करता है पर अपनी होनल पालता है युवतों की वरतों भी कर रहे हैं दिन रात युवतों की तो वरतों कर जिन्ने गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जिन्ने धर्म कर्म हो रहे हैं ये किसी जुगत के अधीन ही चल रहे हैं हर किसी ने अपनी जुगत अपनाई हुई है रब इं मिलता है उन्होंने इं प्रसन्न कर लेता है इं खुश हो जाता है ये सारे दान पुन तीर्थ स्थान के इनान सारे जुगत में ही शामिल ने फिर जुगत बनाई फिर पर गुरु कहते ने जे तेरिया बनाई हुई ये जुगत सफल हो फिर तीर्थ अस्थाना से जाके उन्हें जलों उन्हें दरियावान नहाने वाले सारे मुक्त हो जाए जल के मज्जन जे गत हो नित नित मेंढक नहावे फिर सब तो पहला जेडे उस दरियावान गड्डू तो मछलियां रहिंदियां ने उन्हां दी मुक्ति हो गई एक ख्याल करी जिन्हें जोर दिता है ना उनके को जुगत पुछी अपने जोर से निर्भर ना किसी गुरु उसने संसार से इसे निश्चित किया कि जोर मेरा दिता होया सुरती रूप पर जुगत हे गुरु तू नहीं जोर मेरे मालिक ने सुरत दिती है ते उस सुरत विच जिहड़ी जुगत है वो गुरु को नहीं कि अपनी उस सुरत नहीं हो मेरे चला यही गल पंजवीं पौड़ी के अखीर से सतगुरु ने आखी थी कि मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई मैंने जुगत दे मैंने पता लग जाए जुगत की नहीं था मत किसे मैं अपने जोर दी अपनी सुरत दी अपनी विचार शक्ति दी अपने ज्ञान शक्ति दे जोर नाल अपनी जुगत बना लवा जिहड़ी अज बन रही थावे थावे हर कोई अपनी ज्ञान शक्ति दे जोर नाल ही जुगत बनाई फिरदा उसे नूं असीं गुरमत आखण लग पए किसे लई हर किसे दी गुरमत अपनी हो गई है हर किसे दी रहत मर्यादा अपनी हो गई क्योंकि हर किसे ने अपने ज्ञान ते आधारित ही जुगत निश्चित कर

प्रकाश गोरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के बड़ भाग बडेरे, जन हर हर श्रद्धा हर प्यासु, हर हर नाम मिलै त्रिपतास है, मिल संगत गुण प्रकाश, जन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास, तन तन सतसंगत

आव सैल पत्थर मह जंतो बाई ताका रिजक आगे कर दरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाऊ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काहे मन पहु करिया ऊडे ऊड़ आवे सह कोसा तिस पाछ बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाई है तेरा अंत नाम पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अग

तू जिया का दातारा हर त्यावह संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा।

से जान जुग मह सुखवासी से मुकत पहे जिन हर त्याया जी तैन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहें हर पूजा जी तप हैं जप हैं बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहुसिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहे सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जन होई आस।

कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोये तेती। तुमरा लखा न जाय प्रसार, केहे बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कई पूपा। अंड जजे रज से तजकिनी, उतपुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार या सिख संग रो। दोष जिते उठवत उत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारी, तिनके तुम संकट सब ठारी। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहि निहारे हो, ताके ताप तन कमो हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्व सक न कोई। एक

मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। सरी असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो। बहुरा सकल द्वार कौ छाड़ कै।

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां शब्द तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया।

सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एह सुख मांगे जहां कीर्तन तेरा साधु गावे तहां मेरा मन लागे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहिलारा गुरु जीती महला पहला ओंकार सत गुर प्रसाद जय कर कीर्तन किया करते गावे विचार हित कर गावो सोहिला सिवर सृजनहार तुम गावो मन निर्भो का सोहिला हूँ वारी जब सोहिला सदा सुख होए रहाऊ। नित नित जीवड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुमार संबद सह लिखिया मिलकर पावो तेल देह सजन सिसड़िया ज होवै साहब सुमेल कर कर पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिया नानक से देह अवन राग आसा महला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुरे कोवे सनेक बाबा जय कर करते कीर्त होवे सो कर राख बढ़ाई तोय रहाऊ। विश्व जसें कड़ियां पहरा थिति वारी महा सूरज कोर तनेक नानक करते के वेश राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बनी तारिका मंडल जनक मोती धूप माले आनलो पवन चबरो करे सगल बनराई फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहका शब्द बाजंत फेरी राव सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद बिमल नानेक पद गंध बैना सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं जो ज्योत है सोए तिसदै चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो आनंदन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग कौ होए जाते तेरे नाही वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौखा काम क्रोध नगर ब परिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वडाहे कर डंडाओत पुन वडाही राव साकत हर रसाद न जानिया तने अंतर हम मैं कंडाही ज्यों ज्यों चलहे जुब दुख पावहे जमकाल सहे सिर डंडाही हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन मरण पव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बसो बखंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वडाही जन नानक नाम आधार टीक है हर नामे ही सुख मंडाही राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां घाट जल भरला आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सरहणारे मान गुरमिल का सवारी रहाउ हे संसार विकार संसे मैं तरु ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पिया वह रास अकथ कथा तिन जानी जा को आई सुई बिहाज हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोह कौ कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोह कौ कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: चंद आलापे सतगुर ब्रह्म ज्ञान दे
1: होई तरत पवित्र चरण गुराले छोके
0: ओ तेरा लालो देवी क्रिया फुल गलाब जाते
1: बोल जो सुच्चे मोती दिली परोके
0: आगे सागी लूणा

सतगुरु महाराज जी भाई लालो के घर बैठे हुए हैं। भाई लालो के नाल सतगुरु महाराज जी अनुभवी ज्ञान जिहड़ा सी बख्शां सी रहमतां सी जो परमेश्वर की दात सी उहदी सांझ कर रहे हैं भाई लालो के नाल। और नाल नाल इस संसार की भी गल चल रही है। हुण इत्थे जदों सतगुरु गुरु नानक देव महाराज आए ने ते उदों तकरीबन 15 सितंबर का एड गेड सी ते उस वेले जिहड़े सराध ने इन्हां दी शुरुआत हो चुकी सी, क्योंकि जिहड़ा देसी महीना ते अंग्रेजी महीना इहदा तकरीबन अध दे विच

गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार का

जी का पानी। प्रेम नाल वाली गुरु कहना ये मेरे प्यारे गुरुदेव का उपदेश है। वो कुछ नहीं जो मंगता, दियोगे ता ही ठीक है, ना दियोगे ता ही ठीक है। उन्हें तो सब कुछ ही देना है, दे भी देता है, वो तो देंदा ही आया है, देंदा ही रहेगा। उसे कदे पाऊं के पीछे नहीं देखेगा। साढ़े को चुक हो जाती, सिखा को चुक होई, बिलावा लिखिया पटा को चुक होई, रिश्तेदारों कोल चुक होई, गुरु पुत्रां कोल भुल चुक होई। भुल किस को नहीं होंगी, साढ़े को ही भुल हो रही है। अपनी भुल खोल लो जी, ये गुरु नानक का गुरपुरब मनना है। जब लग खालसा रे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, जबे गए विपन की मैं न करूं इनकी प्रति। जानते हो विपन की होंगे, ब्रिपण वो होंगे, वो पंडित जरा पूजा का तान खांद है, विपन खेंद है, मुर्दिया का भी खांद है, कफन भी बेचद है, मणिया तक भी जानते, जन संस्कार भी करते, तो विपण कहते। जब गए विपण की, जब पूजा का धन खाएगा, मैं ना करूं इनकी प्रति। न्यारे होके रहे हो जी, न्यारे होके केशाधारी बन के रहे हो जी, झगड़ा ना करो जे, चोरी ना करो जे, मिठा बोले हो जे, अपनी आंख में साफ रखे हो जी, एक ही धर्म आपने अपनी आंख में साफ रखे हो जी, ये वही मर्यादा है। ये गुरु का जी बहुत वही मर्यादा है, इनू रहनी कहते हैं। सिखली अख साफ हो गए, ये रहनी है। आप जानते हो कि जी मेरी अख होंगी है, आप पसंद नहीं करते, जानते हो ना, अख मेरी है पसंद नहीं करते। साढ़े उसे दिल्ली में एक और गल रही, भाई जी सन अख मारी सी, मेरे अजीत सन सरदार करीम सिंह सानी चेयरमैन प्रचार कमेटी दिल्ली के सन, मैं उसे बंगला सब सेवा भी सर, भाई मेरे को आया, उन्हें कहा मैं कट लेने तुम सिफारिश कर दियो, मैं प्रधान जी क्या क्षमा कर दियो, सिखो बच्चा है। आखन लगे उसकी अख साफ नहीं, मैं इस भाई नहीं रखना है। सिख भी अख साफ चाहिए, ये मर्यादा है, ये बकौती है, ये सब अवस्था है, ये रहनी है, ये विश्वास है, ये सिखी है, ये जड़ है। सिख भी अख साफ रहनी चाहिए। साच कहो सुन लो, सबे जन प्रेम कियो तिन ही बरतायो। प्रेम नाल वाहिगुरु कहो, ज्यादा कुछ मैं आप नहीं कह सकता हाँ। जे कुछ ऊंच नीच हो ही गया तो मैं क्षमा करना, मैं आपके पासों रुखसत चाहता हाँ। कोई उपदेशक नहीं है, कोई कथाकार भी नहीं है, थोड़ा जहा जीवन जी के वेखिया, थोड़ा जहा अपने मन में सतगुरां दे चरणां विच ला के वेखिया। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ, ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹਿਲੋ ਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀਏ।

मैं आपके चरणों की कोई बेनती करना है, आप प्रेम नाल बोलियो, ये बड़ा जरूरी, ये बहुत ही जरूरी। दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट इंडिस्पेंसिबल। जिन्हें श्वास आना जरूरी है ना साडा, इसी तरह वाहिगुरु मंत्र का उच्चारण जरूरी है। जो श्वास ना हो फिर की हो, और श्वास कौन दे रहे हैं? जिना श्वास दे रहा है उसे नूं तो असी बनाना है। सत

गुरु प्रसाद श्री प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु संसार का

सबना का दाता कर्म विधाता, दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा के रे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा, कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जियो, जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया, ते विरले संसार जियो, तिन जम नेड़ न आवे गुर शब्द कमावे, कब हो न आवे हार जियो, ते कब हो न हारे हर हर गुण सारे, तिन जम नेड़ न आवे जमण मरण तिना का चूका, जो हर लागे पावे, गुरमत हर रस हर फल पाया, हर हर नाम उर्धार जियो, जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया, ते विरले संसार जियो, जिन जगत उपाया।

जिन जाहे जियो इको अंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला पहला चंत करती जा।

मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारी राम, विचार सतगुरु मुझे पूछिया पवर बेली रातो सूरज चढ़िया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली हर वर न पाए राम, कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए।

राम अंतर शब्द मिली सहजे तप्त बुझाई राम शब्द तप्त बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे।

संभाले, मन से आणप छोड़िए, गुर का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सो सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद

हर नामो हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम, हर हर नाम मेरे प्राण वसाए, सब संसार दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया, अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

लाया दुर्गंध मरे चित लागा ज्यो रंग कुसुम्ब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम छाए ज्यो चक्र कुम्यार पवाया दुख खावे दुख संचय पोगे दुख की बिरद वधाई नानक बिखम सुहेला तरिये जा आवे गुर शरणाई।

लाह हर नाम ले जाए, नानक मन तन अर्प गुर आ गए, जिस प्राप्त सो पाए। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोलक रत्न अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत परे पंडारा।

अमृत धारा राम, गुरमुखे गुरमुख नदरी राम प्यारा राम, राम नाम प्यारा जगत निस्तारा राम नाम वड्याई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई, हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नाम सिदात दया कर देवे राम नाम निस्तारी, रामो राम नाम जपया दुख किलिरिख नाश गवाया राम, गुर परचय त्याया मैं हृदय राम रवाया राम, रविया राम हृदय परम रख पाई जा गुर शरण आई आए, लोभ विकार नाव डुबदी निकली जा सतगुर नाम दृढ़ाए, जी दान गुर पूरे दिया राम नाम चित लाए, आप कृपाल

में रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम ते आए राम राम नाम ते आए पवित्र होए आए किस रूप ना रेख्या काए रामो राम रव्या कट अंतर सब तृष्णा भूख गवाए मन तन शीतल सिंगार सब होआ गुरमत राम पर गाता नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मनमुख मूड अपागी राम तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम माया मल लागी मूड पै अपागी जिन राम नाम नह पाया अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया महा बिखम जम पंथ दुहेला कालू खत मोह अंधियारा नानक गुरुमुख नाम

राम मन इकट कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार।

नाम समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम प्रगासिया। नानक हाँ।

राम नाम मन पाया परम सुख पाया अंत चलदियां नाल सिखाई। राम नाम तन पूंजी संची ना डूबे ना जाई। राम नाम इस युग में तुल्हा जमकाल नेड़ ना आवे। नानक गुरुमुख राम पछाता कर कृपा आप मिलावे। रामो राम नाम सते सत गुरुमुख जानिया राम। सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया। राम मन तन अर्पया बहुत मन सर दिया।

पतित पावन हर नाम दियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए अस्थिर होवे, जन्म मरण दोवे दुख मेटे, सहजे ही सुख सोवे, हर हर कृपा तारो ठाकुर, हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन, पतित पावन हर नाम जियो, हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिया दुख बिनसिया, हर नाम परम सुख पाया, सतगुर ज्ञान बलिया कट चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, हर हर नाम तिन्नी आराध्या, जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो, हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आवन जान जियो, आवन जाना परम पौ पागा, हर हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सिखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी, हर रस पाया, से तन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रदाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, आसा मेला चौथा, सत युग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म त्यान जियो, मन तन हर गावे परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगे पावे मान जियो, सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म त्यान जियो, तेता युग आया अंतर जोर पाया, जस संजम कर्म कमाए जियो, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो, मन हृदय क्रोध महा बिसलोध, निरपतावे लड़ दुख पाया, अंतर ममता रोग लगाना।

पग चौथा टिकै टिकाए जियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो, हर कीरत रुपियाई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नामे, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो, कल युग हर किया पग तै खिसकिया, पग चौथा टिकै टिकाए जियो, आसा मैला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुर मस्तक पाग पुराण जियो, तुर मस्तक पाग हर नाम सुहाग, हर नाम में हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगति, हर नाम में हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर

पियो मन मुख करण पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वस्त प्रभ ले स्वामी जन उबरे शब्द कमाए जियो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वडियाई।

गुरु मंत्र दृढ़ाए हर रस रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बाहुड़ मरण ना होई, हर हर नाम अमर पद पा।

जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग उत्तर तरिया हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपूरे हर पाया हर भगत इक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंतरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा।

मन मानिया सब दुख चख मारा, जन नानक नाम त्याया हर रखन हारा। हर जुग जुग पगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाथ दुष्ट हर

सुभाग्य पाठा वाला काल, शुभ पाठा वाला, शुभ कर्मा वाला काल, हृदय काल। क्योंकि हृदय के कार्य में ही शब्द नहीं जाने, एक साथ नहीं गुरु अनेक समाते आख देने, ये बाणी जो जीव जाने, बाणी ने कर्म विच जीव विच वसना, हृदय विच वसना। गुरु ने बाणी विच आख्या जिनको नजर कर्म हो गए हृदय से ना समानी, ये बाणी गल हृदय वसन दी। गुरु कहते हृदय के घर विच भागा वाले हृदय के घर विच पांच शब्द बजे। लो ऐसे रुकना कि पांच शब्द क्यों जोगियों के पांच तरह के छाज ने। मैं कल किसी गुरु पिछली बार इस सब्जेक्ट की दो दिन पूरा होया सी कि जोगियों का जोग मत से गुरु नानक का जोग मत पैदल किए तो जाते हैं, हर एक चीज बराबर से ले जाते हैं। तेरे को आ मेरे को आ, तू श्वासों की पवन में चलाना, मैं गुरु पवन गुरु जड़ाए शब्द की पवन में तोड़ी। ऐसे भी कलफ जोगियों को तरह तरह के वाजिया दवाजा का कोई साधन है, तो गुरु कहते मेरे को पांच शब्द ने, हुण पांच लफज क्यों? क्योंकि पांच नूं सुधारन लई गुरु कोल पांच ही ने, पांच ही श्रेष्ठ गुण ने, पांच ही वड्डे अवगुण ने। पांच इहो कारण है श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर जिथे गुण अवगुण का मसला आया उत्थे पांच गिने ने। गुरु कहिंदे ने

रचना दा ओ मूल है, मुढ़ है आद निरंजन। फिर बाकी सब कुछ माया दे प्रभाव थले है। ओ मालक माया के प्रभाव तो रहत है, शुद्ध स्वरूप है निरंजन। अंजन कालक माया निर्माया तो रहत निरंकार जियो। ओदा कोई आकार नहीं दसिया जा सकदा। हां ताकि गत कही ना जाई, उस मालक दी हालत गति ओदी मर्यादा। ओदा वडप्पन नहीं कोई कह सकदा, नहीं बयान कर सकदा पूर्ण तौर ते। अमित वडियाई ओदी वडियाई ओदी बख्शिश गिनती मिनती तो रहत है। मेरा गोवन अलख अपार जियो, ओ मेरा प्रभु वाहे गुरु। लखता तो रहत है, पारावार तो रहत है। सतगुरा दोना पंक्तियां विच प्रभु दा वडप्पण अच्छा। जिन्ना दी सुरत जुड़ गई, जिन्ना ने मालक नू गाया, उस बेअंत दा जाप करदियां करदियां एक दिन ओदा रूप हो गए। उन्हां नू ते दिसिया वाकई ओ वड्डा है। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज। मैं पेखियो री ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा। आन ना सामसर को लगै, ढूंढ रहे हम मूचा। मैं बहुत ढूंढ के वेख लिया, तत नचोड़ कट के वेख लिया, उस मालिक प्रभु जिदा कोई ऊंचा नहीं। मेरा मोहन प्रभु सब तो ऊंचा है। ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ। नानक प्रभ शरणागति रखन को समरथ। ओ उच्चा है ते बेअंत उच्चा है। सच है जिहड़े जुड़े ज्यों ज्यों ओहदे नेड़े होए जाणिया उन्ना ही बेअंत दिसिया। पर कुछ ऐसे भी कई बारी राजनीतिक पिड़ विच भी ते सच है कई बारी धार्मिक पिड़ विच भी, धार्मिक दुनिया विच भी ऐसे लोग अक्सर आए जिन्ना ने उस मालिक दी बेअंतता नहीं बल्कि ज्यों ज्यों माया दा प्रभाव आया कहिंदे हन असी वड्डे हां। ऐसे भी लोग इतिहास सिद्ध करदा है। जार सिकंदर ने जमा कर कह दिया मैं हूं खुदा। जब दुनिया दा बहुत हिस्सा जित लिया, बहुत पैसा कठा हो गया, कहिंदा दुनिया दे लोको रब मैं और कोई रब नहीं। ऐसा क्या पोर स्वर्गे, पर सच खाक हो गए। इत्थों तक अकबर दा असल नाम से जलालुद्दीन, जलालुद्दीन इहदा असल नाम जिहड़ा सी अकबर दा जलालुद्दीन। इन्हें अपना तखल्लुस की रखिया, नाम की रखिया अकबर। अकबर दा अखरी अर्थ है वड्डा, सब तो वड्डा। मुसलमानी धर्म विच अक्सर असी मुल्ला नू बांग देंदे, ओ अरबी फारसी दी भाषा विच अल्लाहु अकबर एदा मैना है, एदा अर्थ है अल्लाह ही वड्डा है, अल्लाह श्रोमणी है। पर जलालुद्दीन कहिंदा नहीं, जलालुद्दीन अकबर है, ए वड्डा है। जदों प्राप्ति होई राज दी कहिंदा वड्डा मैं आ सब तो। केवल ए नहीं, ए ते अक्सर खाक हो गया। एक दिन ऐसा आया अगों एदा बच्चा सलीम, नाम ते सी सलीम पर इन्हें अपना तखल्लुस की रखिया,
जहांगीर, जहांगीर दा अर्थ है जहानगीर मुठ विच, सारा जहान मेरी मुट्ठी विच है, तखल्लस ए रखिया गया। आखिर खाक हो गया, हुण कौन कहे तू ते मिट्टी दी मुठ। पर सच्चा जद नशा हुंदा है ना राज दा होवे, पावे पैसे दा होवे किसे प्रभता दा होवे, बंदे नू नहीं प्रतीत हुंदा मालक सब तो वड्डा है। कहिंदे हन ए शराब दा ते अफीम दा इन्ना आदि सी, बहुत वड्डा नशई, आखर फेफड़े खाधे गए। शरीर जदो सत्यानाश होया ना कोई यतन ना रह गया, बड़ौंदा सी रात रात उठ उठ के बड़ौंदा सी, जिवें वजीर खां बड़ौंदा सी ना साहबजादियां दा कतल करके। रात महलां च नींद नहीं सी आउंदी, जदों पाप कर्म करांगे नहीं आवे, आउंदी नहीं सी, इहनूं वी नहीं सी आउंदी। इहनूं कदी भाई पुराणा जी, कदी भाई जेठा जी, ओह दिसदे सन। बड़ौंदा कहिंदा सी सतगुरां नूं ग्वालियर दे किले च, रात बड़ौंदा कहिंदा सी, कहिंदा सी ओ भाई पुराणा जी आवे, भाई जेठा जी आवे। इहदी बेगम नूर शाह कहण लगी बड़ा इलाज, पर कोई इलाज नहीं। कहण लगे हुण ते किसे साधू दी दुआ ही है, किसे पूर्ण पुरश दी दुआ है। कहिंदे हन मियां मीर जी कोल गए, दोवे मियां बीबी, क्योंकि यह जिहड़ी नूर शाह सी लाहौर दी रहण वाली सी, ते मियां मीर दे मुढ विच इन्ने आद विच संगत कीती होई सी। जदों गई ना लै के कहण लगे कृपा करो फकीर जी, साईं जी कोई आसरा नहीं, कोई दुआ करो। कहण लगे मैं की करनी है दुआ, ते कोई ब्रह्म ज्ञानी कर सकता है, मैं की करांगा। कहण लगे फिर इस तरह करो ब्रह्म ज्ञानी दी दस पा दियो। कहण लगे एक ते ब्रह्म ज्ञानी है सन, पर तू तत्ती तवी ते बहाल के शहीद कर दित। कहण लगा हैं वो ब्रह्म ज्ञानी सन? कहण लगा हां। कहण लगे साईं जी उदों क्यों ना दसिया? कहण लगे तेरा दिमाग ही इन्ना पागल सी, तू सुनदा ही किथे सी, दस दे तेनू की, तू सुन नू तैयार ही नहीं सी। ओदों सुनाउंदे तेनू कहिंदे तू किथे सुनदा सी, हुणी तेरे कन्न विच

तीर जिसनिहार, अहरन मत भेद हथियार। पाओ खला गद्दप ताओ, पांडा पाओ अमृत तत ढाल, घड़ी आए शब्द सची टकसाल। जिनको नजर कर्म तनकार, नानक नदरी नजर निहाल। श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात, दिवस रात दुए दाई दाया, खेल सगल जगत। चंगे आईयां बुरे आईयां, वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया, गई मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया,

पायो। को बुदान को पूजित है बस, को मृतान को पूजन थायो। पूर करया और जो सभी जग, सरी भगवान को भेद न पायो। पाठ चाहे दसवीं कवि आज बेनती जाओ भई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण हो जत की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो व्रत पारा, हमरे दोष्ट सब तुम काब हो। आप हाथ दे मोहे बचाव हो, सुखी बसे मोर परिवार। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे आए। सब बैरन का आश करे आए, पूर्ण होए हमारी आस्था। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भरे आए, मरण काल का द्रास ने भरे आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरिया सजु करे हो रक्षा। राख ले हो मोय रखनहारी, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बब धरा, काल पाए शिव जुगव धरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है दाहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जिसने उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। शिव कर्ण को शिव गुण सुख दियो, सतर्ण को बल मोहबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, पले बुरे की बीर बशानत। चीटी ते गुंजलिया सूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की बीर बछाने, कट कट के बड़ बड़ की जाने। जब उद करख कर अगर तारा, प्रजा दर्त तब दी अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही ते रह निरालम, जानत वेद वेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद अस्तंभ। ताका मूड चारद भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कार पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनुप रूपा, रंग भयो राव कही पूपा। पांडज जेरज सिद्ध जकीनी, उत्पुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा हव बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगा स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संग्रो। दोष जेते उठ बद पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे आस तुज तब सरणी परे, तनके दोष्ट दुखता मरे। पुरख जवन भग परे तिहारे, तनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नहीं है। रक्षा हुई ताए सब काला, दुष्ट रेट डरेंद काला। कृपा दृष्ट धन जय हरे हो, ताके दास धन गो हरे हो। हृदय सिद्ध कर्म सब हो, दुष्ट शासन के न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताही उबारा। जे

मनोविसारी है। माता के उदर में प्रतपाल करे सु क्यों मनोविसारी है। मनो क्यों विसारी है। वटदाता जगन में आहार पहुंचावे उसनों के पो न सके जिसनों अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक वटदाता सु क्यों मनोविसारी है। जैसी अगन उदर में है तैसी बार माया माया अगन सब एको जेही करता है खेल रचाया। जां तिस पाणा त जमया परवार पला पाया लिव छुड़की लगी दृष्णा माया अमर बरताया। एह माया जतर विसरै मोह उपजै पाउ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप मुल कह मुल ना पाया जाई मुल न पाए जाए किसै बिटों रहे लोग बिल लाई। ऐसा सतगुर जी मिलै तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आई। हर आप मुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल पाए। हर रास मेरी मन बन जा रहा हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुर ते रास जानी। हर हर नत जपो जियो लाह खटे दिहाड़ी एह तन तिना मिलिया जन हर आपे बाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जा रहा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए और दिखते जिजर हर रस बलै न पाए। हर रस पाए बल्लै पिए हर रस बहुत न दृष्णा लग आए। एह हर रस कहे नानक होर अन रस विसरै एह हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जस आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरै जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कहे ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी दादू जग में आया। हर जोत रखी तो दिवच दादू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जन जियो उपाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया तो चलत हुआ चलत नजरी आया। कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जोत राखी दादू जग में आया। मन चाऊ पया प्रभाग में सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सखी सोग दुख न व्यापे गुर चरण लागे जन सभागे अपना बिर जापे। अनहत वाणी गुर सब जानी हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभु आप मिलया करण कारण जोगो। हे श्री राम मेरिया इस जग में आए कहे क्या तुद कर्म कमाया। हे कर्म कमाया तुद श्री रा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सु हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया। कहे नानक शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर संच तलाया। ए नेत्र मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिना वरना देखो कोई हर बिना वरना देखो कोई नजरी हर निहा लिया। एह वेस संसार तुम देख दे एह हर का रूप है हर रूप नजरी आया। गुर प्रसादी बुझा जा वेखा हर कह हर बिना वरना कोई। कहे नानक ने तरंद से सतगुर मिले हैं बदरैट होई। ए श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस माणी। साचा लख बढ़ाणी ता की गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचा सुनने नो पठाए। हार जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पौण वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया। तहे अनेक रूप नाव नवनिध दिसदांत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफांद्र रख कहे वाजा पौन वजाया। एह साचा सुहेला सचै कर गावहो गावहो त सुहेला कर साचै जिथे सदा सच दयावे। सचो दयावे जा तुद पावे गुरमुख जना बुझावे। ए सच सबना का खसम है जिस बख्शे सुजन पावे। कहे नानक सच सुहिला सचै कर गावे। आनंद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान।

बैखरीद क्या करे चतराई एह जियो पिंड सब थारे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पंजवां उमक्यो ही ओ मिलन प्रभताई खोजत चर्यो देखो प्रह जाई सुनत संदेशरो प्रे गृह सेज बिछाई प्रम प्रम आयो तौ नदर ना पाई खोजत चर्यो देखो प्रह जाई सुनत संदेशरो गृह प्रह से गृह सेज बिछाई सुनत संदेशरो प्रह गृह सेज बिछाई प्रम प्रम आयो तौ नदर ना पाई किन विद ही अरो धीरै निमन मिल साजन हो तुझ कुरबानो राव एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जा गंता पियो मदरो तन मत बंता तन जागे जे पिर बोलंता पई निराशी बहुत दिन लागे देश दसंतर में सगले जागे छिन रहन न पावो बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलां सुपागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तापत करहे पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझे ओए सुहाया

ठहराई, खोलियो कपाट ता मन ठहराई, जहां देखा तहरा रहया समाई, खोले कपाट, खोलियो कपाट ता मन ठहराई, रहाओ दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा।

अपराधी दुआन जो हमता मृगा क्या किए जो लिख सुदे जाए महला पहला पर पुष्प संध्या बादम सिलपू सबक समाधम मुख चोट भूखम सारम प्रपाल हाल विचार गलमाला तिलक लाटम दो तुप्ति वस्त्र बाटम जे जान सुबह मुन करम।

नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर समर सुख पावो कल क्लेश तन मह मिटावो सिमरो जास शंभुरे छह नाम देवता गण काने कह वीर पुराण सिमर सुध अख किन्ने राम नाम इतिहास किनका एक जस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांकी एक है दस तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमय सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै प्रभ का सिमरन दुख जम नसै प्रभ का सिमरन काल पर हरै प्रभ का सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ का सिमरन अन दिन जागै प्रभ का सिमरन भाव न व्यापै प्रभ का सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन सार कै संग सब निधान नानक हर रंग प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ का सिमरन जपता पूजा प्रभ का सिमरन बिनसै दूजा प्रभ का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ का सिमरन दरगह मानी प्रभ का सिमरन होय सो भला प्रभ का सिमरन सफल फला सिर सिमरै जिन आ सिमराय नानक ताका लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ का सिमरन उदरै मूचा प्रभ का सिमरन कृष्णा बूजा प्रभ का सिमरन सब ते सूजै प्रभ का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ का सिमरन पूर्ण आसा प्रभ का सिमरन मन की मर जाए अमृत नाम रिद माही समाए प्रभ जी बसै साध की

जह मुश्किल हुए अत पारी, हर को नाम किन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जप हो मन मीरी, नानक पावह सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखियार, का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद न परे, हर का नाम जपत निस्त।

है हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परमंगत पाई, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पुराही। अनक बिघन जह आए संहार, हर का नाम तत्काल उधार। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कहो न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई।

कह मालक जीना हर तन जन को आवरव दीना हर हर जन कह ओत स्थानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग किसे करे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिदवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु

सब ध्यान कठ शास्त्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास कर्म क्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे क्रिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान हो मैं बहु रत्ना शीर कटाय हो मैं कर राति वर्त नेम कर बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौखंड पृथ्वी फिरै

निमुख निमुख का सिर कटावे, तौपी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम सम सरकस नाही, नानक गुरमुख नाम जपत कत पाही। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिनस अर रात,

बहुत से आण पर जम का भव व्याप है, अनक जत्न का त्रिशन्ना त्राप है। एकानेक अगन नहीं बुझे, कोटो पाव दर्गा नहीं सिजय। छूटस नाही उब पय आल, मोहे व्याप है माया जाल। अगर कर तुर सगली जम डान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान। हर का नाम जपत दुख जाए, नान

सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साधु संग दुर्मतमल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपहु जी सदा, सगल वाणी में अमृत वाणी, हर को जस

सीधै। जे प्रसाद का रूप सुख बसै, सुत प्रात मीत बनिता संग हसै। जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पौन पाव के अमला। जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग सास बसा। दीने हस पाव कर नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूल अंधबे

ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुमसे हुए सो आज्ञाकारी तुमरी गतमर तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक दीन हार प्रभ छोड़ कर लग है आन सो आए नानक कहू न सी जई बिन्ना मैं पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पा।

ताको कीजा सद नमस्कारा जाक्या मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन ऊठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व सुख नानक तिन पाया। अगनत शाहो अपनी दे रास सात पीत बरत अनंद उलास। अपनी मान कछ बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खूवे बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मान मत है। उससे चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनक पात माया।

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन को टंब सवाया मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असल बसरा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव है हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरह। मिथ्या नेत्र पेखत परचय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर बेकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरसी साकत की आज्ञा साज बिना कह होवत सूचा। बिरसा नाम बिना तन अंध मुख आवत सा कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिसा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए। वो बिंद भजन बिन बिरसे सब काम ज्यो किरपन के निरारस दाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कच अवर कमावत मान नहीं तीर्थ मुखों गंड लावत। जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर पेश न काहू भीन।

जो तुम भाने तिन प्रभु जाता नानके उनजन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप आप करत नबीरा किसै दूर ज नावत किसै बुझावत नीरा उपाव सियाण सगल ते रहत सब कुछ जाने आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए शांत नंतर है समाए तो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरी।

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत साहे तो ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तुस्को सिमरत परमगत पाव है जे प्रसाद बस सुख मंदत सत्याय सदा मन अंदर जिहे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जिहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय ध्यावन जोग जिहे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिस त्याग कत अवर लुभावै जिहे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिहे प्रसाद तुझ सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै जिहे प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दरगह मान पावै नानक पद के ती कर जावै जिहे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो सुत राम सनेही जिहे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिहे प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिहे प्रसाद को ना पहुचै मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जिहे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करेहे जिहे प्रसाद आपूखण पहरी जाय मन चित सिमरत क्यों आलस की जाय जिहे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को गभू न बिसारी जिहे प्रसाद बाग मिलख धना राख पोए पव अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सब तिसै त्याई तिसै त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जिहे प्रसाद कहे पुन बहुदान मन आठ पैर

सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिहें प्रसाद तेरी पत रहै, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जिहें प्रसाद सुनै कन्नाद, जिहें प्रसाद तेकहि बिस्माद। जिहें प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिहें प्रसाद सु सहजे बसना। जिहें प्रसाद हस्त का चलै, जिहें प्रसाद संपूर्ण फल है। जिहें प्रसाद परम गत पावै, जिहें

ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा

ज्ञानी की नाम। ब्रह्म ज्ञानी के सब उपरमया, ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सौंदर से, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मोता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही संधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभु संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सदजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बर प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए अध्यास्त्र, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त ज्योत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। पुरधार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पस, मन में प्रीत रंजन दस। पात्र रूप न पेख्या नित, सार के टैल संत संग हित। करन न सुने काहू की निंदा, सबसे जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिकिया पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मजे को ऐसा अप्रस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचा, केवल भगत की तन संग।

पसरियो आप होए अनंत रंग, लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अवनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रवृति, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी। कई कोट वेद के सोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है। कई कोट नव तन नाम ध्याव, नानक कात्य का अंत न पाव है। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म ने कोर। कई कोट पर दर्भ को हिर, कई कोट पर रूप न कर है। कई कोट माया श्रम माए, कई कोट पर देश प्रमाए। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जान करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश को मंडल। कई कोट सस्य सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास। कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण सीवे। कई कोट जख्य किन्नर पे साच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सब ते नेरा सब होते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है। कई कोट बैठते ही खाहे, कई कोट काल है सक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। जह जय पहाना तह तह राखे, नानक सब किस प्रव कह हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांग है सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन। कई कोट खाणी अखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट होए अवतार, कई जुगत की नो विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट की ने बहु भांत, सबते होए प्रभु।

कई कोट तत के बेटे सदा निहार हैं एको नेत्री कई कोट नाम रस पीव हैं अमर भय सद सद ही जीव हैं कई कोट नाम गुण गाव हैं आत्म रस सह

कहो मानुख से क्या हुए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ हुए ता सब कुछ ले, जो तिस भावे सोई करे। अनजानत बिकिया मह रचै, जे जानत अपने आप बचै। पर में भूला दै दिस धावै, निमख माहे चार कुंट फिरे आवै। हर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। तिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु ना आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा ना गणै जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बलना ही इस हाथ, कर्ण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई पुन थियो। कभू ऊंच नीच मह बसै, कभू सोभ हर्ष रंग हसै। कभू निंद चिंद व्यवहार, कभू ऊब आकाश पयाल। कभू बेता ब्रह्म बेटा, नानक आप मिलावन हार। कभू नृत्य करै बहु भांत, कभू सोए रह दिन रात। कभू महाक्रोध विकराल, कभू सर्व की हो सरवाल। कभू हुए बह बड़ राजा, कभू पेखारी नीच का साजा। कभू अपकीरित मह आवै, कभू भला भला कहावै। ज्यों प्रवरा कहते भी रह, गुर प्रसाद नानक सच कह। कभू हुए पंडित करे बख्यान, कभू मोन धारी लावै ध्यान। कभू तट तीरथ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कभू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन भरमै भरमिया। नाना रूप जो स्वांगी देखावै, ज्यों का भावै तिवै नचावै। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कभू साध संगत एहो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल मह जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु का सद कुर्बान श्लोक। सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होत स्वान। जो जान मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बो जोन परमावै। तन पूर्ण का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्ति आगै सुख पावै। धनवंत आवे कर गर्भावै, तृण समान कर संग न जावै। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश। सबसे आप जान बलवंत, किन मैं हुए जाए पसमंत। किस न बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुआरी। गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगह प्रवान। कोट कर्म करै हो कारे, सम पावै सगले बिरतारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह को कैसे गवै। आपस को जो भला कहावै, तिसै भलाए निकट न आवै। सर्व की रेंजा का मन होए, कहो नानक ताके निर्मल सोए। जब लग जानै मुझसे कछ हुए, तब इसको सुख नाही कोई। जब ये जानै मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मह फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचर नाही चीत। जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए। सब कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हों छूटै। सहस कटेलह को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिछिया की करै, न तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सपन मनोरथ बिरसे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख हुए, बड़ भागी किसै प्राप्त हुए। कर्ण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावण करनै हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृश्य करी तैसा

संत का दुखन सान प्रकट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन कागजों लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच ने चाए। संत दुखी का सौ को नाही, नानक संत भावे तो ए पी गत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक कंटकन

संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बेजोग। संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत भावे था उसका भी हुए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत का दुखी कौ डान लागे, संत के दुखी कौ सब त्यागे। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख से टरे। संत के दुखी कौ नाही ठाओ, नानक संत पावे था ले मिलाए। संत का दुखी अद बीचे टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुँचे। संत के दुखी को उद्यान फरमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते सोचा जो

एक ऊपर जिस जन की आशा, जिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तसहन लागह दूख। जिसको हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, तो सेवक को किससे डरै। जैसा साथ ऐसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। शोधत शोधत

अनक ज्योत रच साप ओ साप अबनासी नाही किस खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अभेव।

रत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह, सब की जोत सगल खट सो है, धनवंता होए क्या को गर्भ है।

पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू कह तार जो कज कर सोए सुख मान पूला काहे त्र अजान हौन बस आई तेरे संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत्ते ती कर जाहे जिस वक्र को लैंटू आया राम नाम

सर्व शोक सुनिए करता कै। राज मह राज जोग मह जोगी, तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगी। त्याय त्याय पर तह सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन

पूजनी के असानु जैसा जनावै तैसा नानक जानू। नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेद

चरण सत सत प्रसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखण हार, नाम सत सत ध्यान हार, आप सत सत सवधारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुत सत सत जस सुनता, बुजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जन मानिया, कर्ण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर हृदय विश्वास सब आया, सत ज्ञान तिस मन पलटाया, ऐसे निरपो हुए बसाना, जिससे उपजत समाहे समाना।

नानक सो सेवक सास सास कुमारै, अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत राखै ताकि

है। सरगो सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे। सरगो सिख का हलत पलत सवार है, नानक सरगो सिख को जी नाल संवार है। गुर का गृह सेवक जोर है, गुर की आज्ञा मन में।

सेवा करत हुए ने कामी, जिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस विश्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगो जिसरे दहर नाओ, अंक बार गुर कौ बल जाओ। सब निधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंगराता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सहस से आन पल आना जाइए, नानक ऐसा गुरबिड भागी पाइए, सफल दर्शन पेटत पुनीत, प्रसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोह आत्म पति आने, पूरा गुर अखयोजा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेकै होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लय मिलाए, यह बाए।

प्रणहारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचक नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू चाल पटाव है मूर्ख मना सुत मीर को टंब अर बनिता हिंते कहो तुम कमन सनाता राज रंग माया विसार हिंते कहो कमन छुटकार अस हसी रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे नाम बेगाना नाम विसार नानक पहचाना गुर की मत तूले ए आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम अहरो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ चाहे सुभाए नानक गुण गाओ तेरी उतरस मैल बिनस जाए हों मैं बिस फैल ओहें अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल चाड़ से आंप सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गह जयकार सब निरंतर एको देख कहो नानक जा कै मस्तक लेख एको जप एको सा लाहे एक सिमर एको मन आहे।

सब की दृष्टि महा सुख होए, हरस पावे बिरला कोए, बिन चाख्या से जन त्रिवताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजै सचाउ साधक संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास आनंदिन लेव लाग, बड़ भागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए, शिव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इस पुन्नी सबदा सा पूरी, सब रहया सब संग हयूरी, जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए।

सर्व समाए प्रभु भक्त छंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कथा कर्त प्रतपाल आदि पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीत अजान नानक तुमरी सरन पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोह पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग वडिआई हर के नाम की कथा मन पाई मोह भोजन काप संगीत सपना जपति हर हर नीत फलि सुकानी शोभा धनवंत हृदय बस पूरन गुरमंत

आप कुन तब कहते होता, जब तारी आपन कुन समाद, तब बैर विरोध के संग कमात। जब इसका वरण कह नांगापत, तब हरक सोल को कसै व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। आपन केल आप वतीजा, नानक करना हा ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुहाए, तब शिव सगत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडर कवन खत डरे। आपन चलित आप कर नहार, नानक ठाकुर अगम अपार। तब नासे सुख अपने आसन, तै जन्म मरण को कहा बिनासन। जब पूरन का तब सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत ओ चिर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरा गोचर आगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही है चर्जा, नानक आपन रूप आप ही हो प्रजा। यह निर्मल पुरुष पुरुष पत होता, जय बिन मैल कहो क्या सोता। यह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। यह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल चिद्र लगत कहो कीस। यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसह भूख कमन त्रिपतावे। कर्ण कराम करन हार, नानक करते का नाहे तुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला आपै प्रवीन, तै वेदक देव कहाँ को चीन। जब आपन आप उधार,

हार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओर बख्यान आपन के लाप कर देखे खेल संकोच दो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार

बेशुमार अथाह अगणित अतुल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको बसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथ आप सुन न हार आप है एक आप विस्तार जत पावे का शिष्ट उपाय अपने भाण लय समाये तुम से भिन्न नहीं किस हुए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए तो समुन्दर सीतर का बेता नानक सगल शिष्ट का जेता जी जंत्र सब ताका हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखा तिस कोई न मारे सो मूगा जिस मनो विसारे जिस तक अवर कहाँ को जाए सबसे एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जान हो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा।

हार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तन का यह सुहाओ आठ पहर का पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिन तै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साच परीखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन

पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेशत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहत निहाल साकै निकट न आवत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नौ निधि अमृत प्रभु का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचज विस्माद तिन देखिया जिस आप देखाए नानक तेजन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूरन प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वह संतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिसते पिन नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण स्मृत मैं देख सस्य सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोले आपा डोलना कभून डोले सर्व कलाकार खेले खेल मोड़ना पाइये गुण अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत सार रहे स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में इहो विसास संत जना का बेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुन सब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत जिस प्रभ से सगली उत्पत जिस पावै ता करे विस्तार जिस पावै ता एक अंकार अनक कला लखी नैन जाए जिस पावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए नानक जन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्व नैन आप पेखण हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जानक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया।

के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का तुम उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे तिंद आस अनित त्याग सुरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर धन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पाए परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित बहु नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उहार आवत रैलो कहन सार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन अनद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महंत कै माते नानक उदरे दिन कै साते तन जोग सरनी आए कर कृपा प्रव्या मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो

सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया हर नौ निधि आवै खाए, सब ताई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

कीर्ति हर राय हर कृष्ण जी गुर तेग बहादुर याद करो। कीर्ति हर राय हर कृष्ण

पैसा भाई हरनारायण सिंह ने शब्द ग्रहण किया है। कहते ने कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार कोठरे में कोठरी कहते ने शरीर है कोठरा है। इन्हें एक होर कोठी है वह कड़ी है भगती दी नाम दी। कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार प्रभु दी विचार जेडे शरीर भगती होंगी है सिमरन चलता है उनका बयान पे करते हैं। कहते हैं कोठरे में कोठरी

कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार। अगली पंक्ति में सतगुरु सच्चे पातशाह कबीर साहब बख्शिश करते हैं, उस परमात्मा ने कबीर नु बख्शिश की है ये पंक्ति करन दी। नाम रस सतगुरु ने दिता है, ले वो बस समार। अगे कहते ने कबीर दी संसार को कबीर साहब ने सिमरन किया, अपना जीवन बनाया है, एक रुतबा बनाया है। कहते ने कबीर दी संसार को लीने जिस मस्तक पार। तो प्यारा समझियो, जे होर अन रस ने ते उते नाम कदे नहीं टिक सकदा। जिस इंसान दे कोल ए रस ने उस उहदे पल्ले विच कदे नाम ठहर नहीं सकदा। तो आज दा शब्द सतगुरु सच्चे पातशाह बख्श करदे ने, इहो हर रस करनी पाईए। कर्म कर्मां दे नाल कर्मां उपर निबड़े जे लोचे सब कोए। कहिंदे कर्मां दे नाल मिलदा हुंदा ते सब कुछ लै लैंदा।

0: शर्म की खातिर जेड़े जाना लाउंदे ने अमरजीत भगवंत रिल गल बहारा गाउंदे ने अमरजीत भगवंत गिल रल बहारा गाउंदे ने
1: सच दे रस्ते चल के ओ दुश्मन नू मार गए ओ दुश्मन नू मार गए बेशर्म दी खातिर।

धर्मशाल की है, जिथे धर्म कमाया जाता है, जिथे धर्म समझिया जाता है, जिथे धर्म का रूप प्रगट होता है, पछाणिया जाता है। जिथे गौं हो गौशाला आख देते, जिथे कोई पाठ पढ़ा होनू पाठशाला आख देते, जिथे धर्म होवे ते धर्म पढ़ाया सिखाया दिखाया जाता होवे उन्हें धर्मशाला आख देते। मैं बद्धी सच धर्मशाल है, धर्मशाल की जरूरत क्या सवेर वाली पौड़ी का संबंध जोड़ना चाहना, बड़ा खूबसूरत जुड़िया हुआ संबंध है। सवेरे च ख्याल से रुके सा के नानक उत्तम नीच ना कोई, जिस हथ जोर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच ना कोई। ते मुकाबलतन दूजे पासे लफज सी उत्तम से दर उत्तम कही है नीच कर्म बै रोए, उत्तम नीच कोई नहीं, उत्तम नीच है, दोनों चीजों का मसला सवेरे सामने आया। जिसने संखेप ऐसे रुक के अगे तुरैया कि प्रभु का जोर उनकी शक्ति नाल कुदरत का सारी का निर्माण होया है, जो शक्ति वरत रही है, जिनके सहारे मनुख बोल रहे है, चल रहे है, देख रहे है, सुन रहे है, जीव रहे है, मर रहे है, इस सारे विच प्रभु शक्ति प्रभु का जोर वरत रहे है। प्रभु ने अपने जोर विच अपनी वरतों विच अपने निर्माण विच अपनी पदाइश विच अपनी प्रोडक्शन विच कोई उत्तम ते नीच नहीं बनाया, नहीं बनाया उनके जोर विच उत्तम नीच कोई नहीं। एग्जाम्पल किसी मनुख बनाया, उन्हें ना भगत बनाया ना डाकू बनाया, उत्थे उत्तम नीच ना कोई, पर बन गया। इस धरती से डाकू भी पैदा हो गया, बाबा कबीर ने इथों तक आखना पिया कबीर धरती साध की तस्कर बै चंगा है, चोर भी जाते हमें ख्याल करो। अज की पौड़ी इस गल बड़ा खुलासा करके समझा रही, गुरु कहते हैं कोई भरम न रह जाए। रब ने धरती बनाई, ना कोई धरती माड़ी है ना कोई चंगी है, जो बनावट का मसला आया उदों गुरु नूं यह गल आखनी पई, सब नगरी में एको राजा सब पवित्र है, थां कोई थां माड़ी नहीं चंगी। मरण जीवन को धरती देने बना, पर हुण उस धरती के एक हिस्से पर किसी ने रूड़ी सुटनी शुरू कर दी, रूड़ी का ढेर लगा दिता, गंदगी का ढेर लग गया। उस धरती का एक हिस्से पर किसी ने फुलों की फुलवाड़ी लानी शुरू कर दी, जब उस गंदगी के ढेर को उस धरती कोई लंघता है तो नाशका से हाथ दे लैंदा, कपड़ा दे लैंदा, कोशिश करता इस तरह ना लंघना पवे, उन्होंने देखना नहीं चाहता।
ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ 10 ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਨੱਕ ਦੀ ਆ ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪੈਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚ ਪੈਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਬਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰੋ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ

चौमर पानी मंगवाया, उस पानी की वर्तों करके अमृत तैयार किया जीवन देने का। कोल के शैतान भी देख रहा, उन्हें आख्या मैं इन्दे नालों वड्डी गल करा। वो गंगा के किनारे चला गया, उन्हें सुरसरी की पवित्र नदी अखवाण वाली नदी विचों पानी ले लिया। उस पानी विच जाके शराब का मटका पा लिया, पानी की उन्हें भी लोड़ सी, रब ने पानी इतना पैदा किया। उस नानक पुत्र मीत ना हो दो चीजा फर्क की, गुरु को भी लोड़ पी पानी की, उन्हें अमृत बाटे विच पानी वरतना, बर्तन को पानी पानी बना दे। पर किड़ी अजीब गल है, शैतान को भी पानी की लोड़ पै गई, उन्हें आम पानी भी नहीं वरतिया, वो गंगा सुरसरी के किनारे से चला गया। उन्हें उतों पानी की बाल्टी भरी, शराब का मटका पाना सी, उन्हें उन्हें पा दिया, उन्हें कड ली शराब। शराब की बोतल लैके किसी महापुरुष उत्तम बिरती वाले चंगे भगत जन मनुख को चला गया, गुरमुख को चला गया। तो कह लगा भलिया उत्तम लोगों वास्ते मैं उत्तम शराब तैयार की, भले लोगो थोड़े लिए शराब भी चंगी तैयार की, आम ना लो मैं किसी आम पानी में शराब तैयार नहीं की, मैं गंगा के सुरसरी के पानी में यह शराब तैयार की है, इसलिए यह शराब पवित्र है, तुम पी लो ताकि गंगा के पवित्र जल में बनी हुई शराब कोई साधु पी ला जाए। सवाल खड़ा, और सवाल केवल मेरे थोड़े तक ना रहा,

शराब भावे गंगा के पवित्र जल विच बनी होवे भले लोग उत्तम लोग उन्हें परवान नहीं करते। बाबा रवदास हुण पानी उन्दे विच वरतिया गया, पानी अमृत के बाटे विच वरतिया गया, शराब बनाने वाले ने भी जल ही वरतिया बल्कि दूजिया जलों नालों आप वालों श्रेष्ठ वरतिया। उन्हें पता नहीं कि अपने आप में पानी उत्तम नीच ना को भावे तू गंगा के वहन विचों लाया तो भावें किसी लाया अपने आप में पानी उत्तम नीच ना को। हाँ तेरी वरतों नाल उत्तम नीच हो जाना है, वह हो जाना है अमृत का बाटा, यह हो जानी है शराब की बोतल पानी दो थमा के ऐसे आके उत्तम नीच हो जाए। लो आ एक फैसला से कि नानक उत्तम नीच ना कोई का भुलेखा यह नहीं कि होना ही कोई नहीं, तू अपने कर्मों नू नाल देखी वो जोर जिहड़ा मालिक ने तेरे शरीर विच दिता है, तेरिया अखां विच दिता है, तेरे सरवणां विच दिता है, किते उनकी गलत वरतों नाल उस अमृत बनने वाले इस जोर नू शराब ना बना ले, फिर उत्तम नीच का मसला आ जाएगा। फिर उत्तम सेव दर उत्तम कही है नीच कर्म बैरोए हो जाए। हूं एक ख्याल करियो केड़ा उत्तम है ते केड़ा नीच है, इनका फैसला कौन करे? इनका मतलब उत्तम नीच हो सकता है। हूं मतलब है कि उत्तम या नीच जेड़ा है वो किस आधार पर मनिया जाए? हो सकता है पर कौन फैसला करे ये उत्तम है ये नीच है? मैं सवेरे भी कल की सी अदालतां किस लई बनदियां ने, जदों माड़े ते चंगे दो तरह के आदमी हो जाण ना उदों जुडिशरी की लोड़ पैंदी। फैसला तो किसी को लैना ही है, फाइल तो किसी के सामने पेश होनी है, किसी ने उस फाइल को बचना है पड़ताल करनी, इसलिए पुलिस की भी उदों लोड़ है जदों माड़े चंगे दो तरह के लोग होण, अदालतों की भी उदों ही लोड़ है जदों माड़े चंगे दो तरह की लोड़ होने। हुण इत्थे मसला यह आ गया कि उत्तम सेवदार उत्तम कही है नीच कर्म बैरोए, ओ प्रभु के जोर ओ शक्ति।

0: एक की है दर्शन, मंजिल की है दर्शन। गल नू समझे गुरु को, चरण धूड़ तेरे जन की होवा, जानदा है सत्कार ते मंजिल की है दर्शन। मेरा मनोरथ है तेरे दीदार, ते तेरे मार्ग ते जड़े तुरे हुए ने ना, तेरे वाले जड़े सफर ते तुरे है, मैं उना दे चरणा दी खाक बन के नाल लग के चलिया जावां। महाराज मैनू ऐसी बख्शिश करो, रोज तुसी अरदास कर दे, रोज सिख दी अरदास दी संपूर्णता किथे है। सारे दिन दे खल जगण तो बाद, सारे दिन दी भटकना तो बाद, जड़े आखरी बचन कहने ने ना, वो गुरमुखो यही कहना है कि अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगै मोको कर संतन की धूरे। की आखना गुरमुखो, मोको कर संतन की धूरे। मेरे प्रीतम जी, मैनू अपने प्यार रतियां रूहां दे चरणा दी धूड़ बना लो सच्चे पातशाह। एर जोई करनी गुरमुखो, ये निम्रता दे लखायक बचन ने। गल शरीर दे झुकण दी नहीं है, गल हिरदे दी गरीबी दी है। जिस दिन हिरदे च गरीबी, अज माफ करियो गुरमुखो, जिथे 150 सिख जुड़ के बैठे ने, मैं प्रधान बनना सकत्तर बनना ते प्रमाण करदा, ये नहीं जी करदा भी मैं ते चौकीदार बन के खड़ा होवां। ये अंदर दी हौमै है। गुरु साहब कहिंदे जे रब्बी राह ते तुरना ना, दर्शन दी टेक रखनी है, दर्शन वाली मंजिल ते पहुंचना है, ते फिर जन की धूर बनना पएगा। फिर परमेश्वर दे प्यारियां दे इस जीवन नू ये अरदास करनी, महाराज साध पगां हेठ रुलसी रे, मेरे इस हंकारी मन नू ये निम्रता दे बचन ने, ताकि अंदरों होमै मर सके। मन हंकार विच हाथी बनिया बैठा है, ते वाहिगुरू दा दरवाजा है छोटा, नीवे होके लंघण वाला, ते मन बन गया मैंगल हाथी। सच्चे पातशाह जी दे बचन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे, बाबा कबीर जी दे मुखारबिन तो निकले बचन ने, कबीर मुक्त द्वारा संकरा राई दसवें भाए, मन तो मैंगल होए रहे हो। मेरिया मना जे हाथी बन गया, उहदे राई दे दसवें हिस्से जिन्ने, गल बाहर मुखी नहीं है गुरमुखो, अंदर दी बरीकी दी है। मेरे बाबे ने की मंगिया सी, बाबा पहिंदा सचखंड नौ निद नाम गरीबी पाई। बाबे ने की मंगिया, गरीबी मंगी। ते अज गुरमुख प्यारियो, बाबे दा सिख खवाण वाला मेरा जीवन हंकार दी शिखर ते पहुंच गया। फिर जब लग मेरी मेरी करै, तब लग काज एक नहीं सरै, फिर जीवन कित्थों सरेगा। ये बचन इस वास्ते कहे ने, चरणा दी खाक बन जावा, धूड़ी बन जावा, ताकि हिरदे विच गरीबी आ जाए। महाराज तेरे दर्शना नू मेरा मन लोचदा है।
1: अमृत बचन हृदय उर तारे, तौ किरपा ते संग पाए।
0: अमृतमई बचन हिरदे च वस जाण महाराज, तौ किरपा ते संग किवें मिलेगा, तेरी किरपा दे नाल, मेरे यतन नाल नहीं महाराज। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक बचन बड़ा प्यारा किया सात संगत। भाई साहब जी कहिंदे, भलिओ पुरखो रहमत किवें होनी है, किरपा नाल, किरपा सदका। जदों मैं अपने कर्मां वल वेखदा, कहिंदे अपनी करनी कर नरक हो ना पावो ठाओ, तुमरो बिरद कर आसरो संभारो। इस वास्ते किरपा मंगी है।
1: अंतर की गत तुद पै सारे, तुद जेवड अवर ना कोई।
0: मेरे हृदय दी बिरथा, अंदर दी वेदना सारी मेरे प्रीतम जी तेरे सामने प्रगट है। मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखदा, ते तेरे तो बिना कोई दूसरी टेक नहीं तकदा।
1: जिसनो लाए लहे तो लागा, भगत तुहारा सोई।
0: जिन्हां उत्ते मेरे साहिब तुसी बख्शिश कर दे हो, जिन्हां नू तरस करके तुसी चरणा नाल जोड़ लेंदे हो महाराज, कर तुमरी कृपा कौन कौन ना तारे। अजा मल पापी जग जाना, गलका पापन होए क्या पापा का गला हार परोता। तेरी कृपा सदका, दयालता सदका, पापी तर गए महाराज, जिन्हां नू तुसी बख्श लवो।
1: दोए कर जोड़, ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ।
0: ਇੱਕ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।
1: ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਪਾਵਾਂ।
0: ਇਹ ਨਸੀਬ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁੱਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
1: ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ।
0: ਬਸ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਚਾਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।